0: अठानब्बे चालीस सड़चालीस उनसत्तरी पच्चीस
1: सहारा दे दिया है फिर सब दिन किसान को जो किसान का ही भरोसा
2: सारा सम्बन्धी रोगको सबै हात खुट्टा सङ्कटले पुरा

व्यापक बनाने उपचार को पहुंचना यहां प्रभावित व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

बिहान 7 बजे को नेपाली भाषा को हमार संदेश यति नै बेलुका 5 बजे मौसम बुलेटिन लिएर आउनेछौं। तब सबैका लागि प्राविधिक साथी गौरी शंकरलाई धन्यवाद दिँदै म पुष्पा बिराउँछु। नमस्कार।

शहीद जानकारी पाइजलाट और मतलब उपचार केन्द्र कर्णपा बैठक प्रधानलाई आधिकारिक रूपले स्मेट बाइक नेपाल डट ओ आरजीमा जाकर आवश्यक जानकारी दिनु सकिन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

जीवन खत्म हुई संतरी खाना खाई व्यायाम सत्य करी धूम्रपान मदिरा बस रही पुनः पुनः करी आ

0: सेम टाइम सुधारे स्वस्थताई सुरक्षित परिवार
1: रेडियो द्वारा सभी को जारी संदेश।

संध्या सवा 6 बजे हमारा संदेश में अपना स्वागत था सत्य बिंदु संगम में उत्पादित हमारा संदेश पर दिया था साथ ही राजापुर में से प्रसारण हुई की बात।

0: खाने ले लीजिए। ओहो, तुम्हें तो हाल को खाने भाई था नहीं।
1: की को सर सर लाओ दिना रखो।
0: मैंने की सर हमें लाने वाली पानी को पैकेज में रखे हैं। अच्छे दिनों तीनों चीज आलू स्वास्थ्य का लागी हाने का रख मिशन वाली ना।
1: सही बोलो सिंकर। जंक फूड में चीनी रफ़ा स्वस्थ चीजों ठीक है उनसे। ये इसमें विटामिन खनिज फाइबर और प्रोटीन पर्याप्त न होने वाले कारण शरीर में आवश्यक पोषण पुग्दैन। अस्वस्थ चिरोले रक्तचाप बढाउने डाक्टरहरू पनि बताउँछ।
0: ए हुन जान्छ म पनि अब बजारतिर परिपना खान सक्न सक्छु होला।
1: अवश्य सक्छौ। यसका लागि घरमा पाइने फलफुल तरकारी दाल अन्डा चिउरा मिसाएर खाजा बनाउन सकिन्छ नि। यसरी घरले खाजा खाइरह्यो भने पानी परिहाल्छ नि। मिठो लेभलमा जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गरौँ। पछिल्लो खाजालाई प्रोत्साहन गरौँ।

0: अठानब्बे तो जीरो तिरपन उन्यासी पचहत्तर र अठानब्बे चालीस सत्तालीस पचहत्तरी पच्चीस
1: किसान को दूध किसान का ही भरोसा
2: सही चमकी होश भारतीय युवा को यही सही।

0: पक्ष ने बेसमान महाधिवेशन को तैयारी में जो है ना नेता शेखर कोईराम भाई पक्ष को प्रतिनिधि सहभागी भाग आपू अभी पार्टी एकता को पक्ष में रहकर कोईराम ने बीबीसी बताए
1: सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेर्नु भएको छ भनेर सोधेका छौँ।
2: सबैभन्दा चासोको विषय त के हो भने

0: kepala dosa yang bersih, untuk lakukan kebutuhan kita macam ni.
1: Iswah selama usai jangkari baiklah, untuk lakukan kebutuhan kita kena bagai kebutuhan baiklah. Adikari kumpit, isni baik Nepal, dan wadi mazaka, awasin jangkari di Indonesia. नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण शाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल